0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुर्गु नगरपालिका पाँच सो

पहले सुना भोग तो मैंने मेरे ईमान साया को बस पहले सुना भोग तो मैंने मेरे ईमान।

0: प्रोलो एफएम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: प्रस्तुत छ कार्यक्रम बदलिदो नेपाल।

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 चोलकुंबू

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अगणित व ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर कक्ष बुकिंग सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष का संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी अर्थ सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आईना अधिकार कार्यालय प्रमुख सभा संपर्क
2: प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराजमान।

पत्रकार को सूचना में पहुंच सीमित भक्त सरकार गैर जिम्मेवार भय प्रश्न उठाने पत्रकार को दायित्व रहकर मंत्री तिमिल सिन्हा तो बनाई यूक्रेन को लुहांस्क क्षेत्र नियंत्रण में आयोग रूसी राष्ट्रपति पुटिन को घोषणा पूर्वी यूक्रेन में सैन्य अभियान जारी रहने भनाई विश्वकप फुटबल को प्री क्वाटर फाइनल में आज रात ब्राजील और नर्वे तथा भोलि बिहान इंग्लैंड और मेक्सिको खेल दिवसों 12 बजे को खबर सको दिवसो 3 बजे खबर लिये फिर आने उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाण्डु में 90 MHz उज्यालो online.com पढ़ने सुन्ने शरीर स्वस्थ राख प्रशस्त पानी पीने।

0: না আজকে বারখানে কি মেলে আয়গো ফের বিজুলি কে পদ জালে সা এই কাঞ্চি যা যা পতল গাইরে বিজুলি কে পদ মেরে আয়গো দিদি ছিমকো অসুন কিনেরা কসরী সাপনু রামরো অরিজিনাল বিজুলিকা সামান হরু কিন্নু পরিনি তা যাহা পায়ে তেই বাটা ল্যাউডা এসে ডুপ্লিকা হুন্ছ তা অরিজিনাল বিজুলিকা সামান কিন্নে তা ও সল্লেরিক বর্ষা ইলেকট্রনিক্স মা জানু পর্ছ কি তপাই ঘর তথা অফিসকো লাগি বিজুলিকো রামরো কোয়ালিটিকো সামান হরু খোজতে হুনুছ यदि क्वालिटी को इलेक्ट्रोनिक सामान लीन चाहूँ भी सोलु दुतकुंड नगरपालिक पांच सल्दी में रहकर वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड सर्विस सेंटर में संपर्क राख्होस यहां विभिन्न ब्रांड का गुणस्तरीय बिजुली का संपूर्ण सामान सर्विस केबल मल्टीप्लग पावर सकेट लिस्टी अर्थिंग को तार अर्थिंग रड अर्थिंग केमिकल उपलब्ध साथ ही एलसीडी एलईडी टीवी साउंड सिस्टम कंप्यूटर लैपटप हाउस वायरिंग का सामान चार्ज वाला टॉर्च लाइट तथा इलेक्ट्रोनिक सामान होलसेल मूल्य में पाइन चट्टान में पड़े जले संपूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामान मरम्मत कर
1: साथ ही डीप फ्रिज फ्रिज एसी पालन का साथ ही मरम्मत
0: प्रोपाइटर अजय पंचियार संपर्क नंबर 9809609094 र 9863868618 वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड सर्विस सेन्टर सोलु दुतकुंड नगरपालिका पास सल्लेरी सोलुकुम्बु
1: राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक देखि 30 मीटर भित्र

0: बजार में
1: चिंता कि एक पटक लगानी करी दसों वर्ष झुक्का होना होंडा को महिला मैत्री दुई वर्ष वारेन्टी न थर्काउने न बिग्रीने हल्का खेतबारी जोत्ने टिलर छोड़े खाने नेपालभर अवस्थित सब होंडा शोरूम में किन्न पाइन्छ र बिक्री पछिको पार्ट्स तथा सर्विस समेत सोही शोरूम बाट उपलब्ध हुनेछ।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 PM आपको 8 बजे
0: आइन चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बू
3: आज बिहान 8 बजे प्रसारण भएको कार्यक्रम बदलिदो नेपालको पुनः प्रसारण

0: समावेश रेडियो समावेश आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ज
2: हजारों रेडियो कर्मी करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नयाँ नयाँ भर्सन बजार में लन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको विक्रम बजारबाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारी भुजान ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852988002 र 9842808300

0: काठमाडौँ एफएम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: 10 PM रात को 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुर्कु नगरपालिका 5 सोलुखु